प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी।

दो चीजां ने, एक चंगयाई एक बुरियाई। चंगयाइयां कठियां करनियां होन तां कुछ कठिनाइयां दा सामना करना पैंदा है। चंगयाइयां मिलदियां बड़ियां औखियां ने, बुरियाइयां कठियां करनियां होन तुहानूं दूर नहीं जाना पएगा, तुहाडे कदमां दे नाल ही बुरियाइयां हन। चंगयाइयां नूं इकत्र करन वास्ते तुहानूं बहुत सारा जिंदगी दा लंबा सफर करना पएगा। तो बुरियाइयां तां बिल्कुल नाल ने, जदों मर्जी कठियां कर लो। हसूर ने कहना कि बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। जिस ते पल्ले चंगियाइयां होण उहदे कोल सिदक आ जांदा है, ते कई वार अकाल पुरख उहदे सिदक दी परख भी करदा है। एक वार रसना पवित्र करो ते आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्ना नहीं आख्या एक बारी फिर आखो प्यार नाल सतनाम श्री। सिदक दी परख है ना। मीरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जागदी जोत, दो तलवारां पहन के बहुत मिठा बोलदे सन हजूर, संगतां नूं उपदेश दे रहे ने। बहुत सारियां संगतां दर्शन करदियां ने, ते जिहड़ा भी दर्शन करदा है होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झट्टी है, ते सारे पढ़ो तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी। जिथे होर सिख सेवा करदे ने उथे एक सिख जिसका नाम भाई हरपाल है, वो भी सेवा करता है। सेवा करदियां करदियां अज कन्नां विच एक आवाज आई,

राग भीम पलासी, दो राग ये आपस विच बहुत मिलते ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरां ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुरते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुरते इदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदस है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

0: जगत है जैसे सपना
1: बारू भीत बनाई रचपत
0: रस नहीं दिन जा
1: तैसे ही सुमाया के उज्जो कहां गवा
0: अजनु समझ

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।